ष्टेयाता तवा चौता सौवाने हके विनष्टेयाता न एता सौवाने आ याय आ याय हा हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या।